श्रीमती अनीता सेन के गाये मिश्र खमाज के साथ ही आज का उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। हमारे आज के कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह। आइए सबसे पहले उनसे सुनते हैं ये गजल।

जगजीत सिंह के गाय इस गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हो, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में

शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक

0: ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करसियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करसियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानशी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे।

0: पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भामरी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म कसूर से। इस गीत को गाए हैं अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म खुद गर्ल से। इस गीत को गाया है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर और फारूक कैसर ने। धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

आनंद बख्शी की शब्द रचना, राजेश रोशन का संगीत, उदित नारायण सुखविंदर सिंह की आवाजें, फिल्म का नाम न तुम जानो न हम।

जय भारती कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म नौजवान से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने और धुन बनाई है एस टी बर्मन ने।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही जय भारती कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। माफ कीजिएगा, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। रांची के 36 केंद्रों पर आज यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ये निषेधाज्ञा शाम 7:30 तक प्रभावी रहेगी। सभी केंद्रों में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर 25 मई से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक को लेकर पेश है रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास कार्यों को गति देने के लिए कल से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। अलग अलग दिनों में होने वाली बैठकों के लिए अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र जारी किया है। माना जा रहा है कि बैठकों के जरिए सरकार सभी विभागों की जवाबदेही तय करेगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। पहले दिन जल संसाधन और पेयजल विभाग के साथ वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिमेश रंजन ने आज उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गुमला के पद पर योगदान किया। उन्होंने जिले के संपूर्ण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने उपायुक्त दिलेश्वर महतो से भी मुलाकात की। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की टीम भावना एवं समन्वय के साथ कार्य करते हुए जिले के विकास को नई गति प्रदान की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड के तौर पर नहीं किया जा सकता। कल एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने देवघर जिले के 2 शिक्षकों के तबादले के आदेश को निरस्त करते हुए मूल पद स्थापन पर बहाल रहने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि विभाग को शिक्षकों के खिलाफ कोई शिकायत है तो उन पर अलग से कार्रवाई की जा सकती है। आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रादेशिक समाचार। ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने रामगढ़ जिले में हर घर सुरक्षा अभियान के तहत विभिन्न प्रखंडों में सामाजिक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। बैंक सखियों और सामुदायिक कैडरों ने केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश की बेटियां सशक्त और आत्मनिर्भर बनकर समाज और राष्ट्र का भविष्य बन रही हैं। उन्होंने शनिवार को लोहरदगा के प्राचीन गुरुकुल शांति आश्रम में आयोजित 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आर्य वीरांगना शिविर के समापन समारोह में ये बातें कहीं। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने CSR के तहत आरोग्य मित्रा प्रोजेक्ट के माध्यम से धनबाद सदर अस्पताल को हेल्थ ATM और पोर्टेबल ECG मशीन उपलब्ध कराई है। आरोग्य मित्रा प्रोजेक्ट सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर अमित चौधरी ने बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों तक त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाना है। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के कर्माटाड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है।
2: लगातार अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में नारायणपुर और कर्माटाड़ जिले कोई 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास जो बरामदगी हुई है वो कुल 15 मोबाइल है, 14 सिम कार्ड है, 4 ATM कार्ड है, 2 लैपटॉप है और लगभग 50,000 रुपए नगद राशि बरामद की गई है जो इनके द्वारा लोगों से ठगी करके अपने पास रखा गया।
0: धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर जंगली हाथियों के झुंड से ग्रामीण परेशान हैं। करीब 35 हाथियों का झुंड पिछली रात जाताखुटी पंचायत के दालूगोड़ा गांव में घुसाया। हाथियों ने स्कूल को क्षतिग्रस्त किया और वहां रखे मध्याह्न भोजन का अनाज खा गए। सूचना मिलने पर मशालची पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को गाँव से बाहर निकाला गया। गिरिडीह सेंट्रल जेल में कल देर रात उपायुक्त राम निवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में दो दर्जन से अधिक अधिकारियों ने छापामारी की। छापेमारी में पुलिस को कोई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है या नहीं, इसकी सूचना अब तक नहीं दी गई है। गिरिडीह जेल में बड़े नक्सली और अपराधी बंद हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत हम सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: స్వయం ఇది కట్టుబడి భారతీయ సేనా.
1: और श्रोताओं वही सुनते हैं फिल्म दरिया दिल का ये गीत. इस गीत को लिखा है इंदिवर और विट्ठल भाई पटेल ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने, इस गीत को गाया है नितिन मुकेश और विट्ठल भाई पटेल ने.

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुनीता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म आजाद का ये गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्णा ने और धुन बनाई है सी रामचंद्रन ने।

मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज, फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म चित्रलेखा से। इस गीत को लिखा है साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई है रोशन ने और गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म गजल से। इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने, वो लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

डॉक्टर सतीश चंद्र। इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे निवर ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही राजी मेलोडीज कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम से सुनीता आपसे लेती है विदा। नमस्कार, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। गिरिडीह जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए SP डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आज जागरूकता रैली निकाली। SP ने बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट लगाए लोगों को गुलाब फूल देकर हेलमेट पहनने का आग्रह किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिमेश रंजन ने आज उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गुमला के पद पर योगदान किया। उन्होंने जिले के संपूर्ण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। गोड्डा में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कॉमनवेल्थ डे के 75वें संस्करण और कॉमनवेल्थ गेम्स थीम पर +2 उच्च विद्यालय से शहीद स्तंभ तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में हॉकी खिलाड़ी और खेल प्रेमी शामिल हुए। रांची के 36 केंद्रों पर आज UPSC की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ये निषेधाज्ञा शाम 7:30 तक प्रभावी रहेगी। सभी केंद्रों में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के कर्माटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर जंगली हाथियों के झुंड से ग्रामीण परेशान है। करीब 35 हाथियों का झुंड पिछली रात जाताखुटी पंचायत के दालूगोड़ा गाँव में घुस आया। हाथियों ने स्कूल को क्षतिग्रस्त किया और वहां रखे मध्याह्न भोजन का अनाज खा गए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें चर्चा होगी एक पौधा लगाओ, पक्षी बचाओ, किताबें हमारे दोस्त, बाल गीत आप सुनेंगे, बच्चों के मुख से भी आप सुनेंगे, जानकारी मिलेगी स्वच्छ पृथ्वी, सुंदर भविष्य, धरती की रंग बिरंगी दुनिया का राज, जैव विविधता, बाल कथा भी आप इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे। और प्रेरक व्यक्तित्व में स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की पे भी आपको जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम की प्रस्तुति है नूतन प्रसाद की, सूत्रधार होंगे अवधेश कुमार और रानी शुक्ल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और खूब मस्ती भी कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि आपकी गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई है, क्यों?
1: और बिल्कुल, और आजकल तो सुबह सुबह चिड़ियों की मीठी आवाज सुनकर मन कितना खुश हो जाता है ना। कभी

0: गौरैया, कभी मैना, कभी तोता तो कभी कोयल की आवाज, ऐसा लगता है जैसे पक्षी भी हमें सुप्रभात कह रहे हों।
1: बिल्कुल, और सच में इन नन्हे मेहमानों से हमारी दुनिया कितनी प्यारी लगती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक दिन ये पक्षी ही ना रहे तो हमारी सुबह कैसी होगी, हमारी दुनिया कैसी लगेगी, ये सोच कर ही मन उदास हो गया ना।
0: हाँ, लेकिन बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया है, पहले जितनी चिड़ियाँ दिखती थी अब उतनी ही कम दिखाई देती हैं। और क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है?
1: क्योंकि पेड़ कम हो रहे हैं, पेड़ों के कटने के कारण पक्षियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। बच्चों, पेड़ पौधे सिर्फ हमें छाया और ताजी हवा नहीं देते बल्कि पक्षियों का घर भी होते हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा दीदी, और वे पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, वहीं आराम करते हैं, और अगर पेड़ कम होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों कि पक्षियों के रहने में परेशानी होगी।
1: बिल्कुल, और ऐसा तो हम होने ही नहीं देंगे, है ना? और इसके लिए हम सब मिलकर उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे? बस एक छोटा सा पौधा लगाकर।
0: वाह वाह वाह, क्या बात कही है आपने। बच्चों सोचिए, आज लगाया गया एक नन्हा सा पौधा कल किसी पक्षी का प्यारा सा घर बन जाएगा, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा भैया आपने। तो बच्चों, आप भी अपने घर, आंगन, स्कूल के आसपास की किसी खाली जगह में एक पौधा जरूर लगाइए, और हाँ, उसे रोज पानी देना ना भूले।
0: क्योंकि पौधा लगाना जितना जरूरी है बच्चों, उसकी देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। और बच्चों, अगर हम सब मिलकर एक एक पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें, तो हमारे आसपास हरियाली भी बढ़ेगी और पक्षी भी सुरक्षित रहेंगे।
1: हाँ बच्चों, पक्षी सिर्फ सुंदर ही नहीं लगते बल्कि वे पर्यावरण को संतुलित रखने में भी मदद करते हैं। वे बीज फैलाते हैं जिससे हरियाली बढ़ती है, और कई हानिकारक कीड़ों को भी खाते हैं।
0: इसलिए बच्चों, आप सब मोबाइल और गेम्स से बाहर निकलकर थोड़ा समय प्रकृति को भी दें, कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसमें पानी भी दें, उसकी देखभाल करें, और जब वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा ना बच्चों, तो उस पर चिड़ियाँ बैठेगी तो आपको भी बहुत खुशी होगी, है ना? एक पौधा लगाइए और पक्षियों को बसाइए।
1: बिल्कुल, याद रखिए बच्चों, एक पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, किसी पक्षी का घर भी होता है, और हरा भरा वातावरण ही खुशहाल जीवन की पहचान है। इसलिए आप भी प्रकृति से मित्रता करें, दोस्त बनाएं, क्योंकि खुशहाल जीवन के लिए मित्रता भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, खुशहाल जीवन के लिए तो अच्छे दोस्त बहुत जरूरी होते हैं। जैसे पेड़ पौधे और पक्षी हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं, ठीक वैसे ही अच्छे दोस्त हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं।
1: हाँ, और आप जानते हैं बच्चों कि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हमेशा हमारे पास रहते हैं। जब हम अकेले हों, उदास हों, या कुछ नया जानना चाहे, तब वे चुपचाप हमारी मदद करते हैं।
0: बिल्कुल, और ऐसा कोई दोस्त जो हमें हंसाए भी, नई बातें सिखाए भी, और कभी बोर न होने दे, और जब मन करे तब हमारे साथ समय बिताए, तो ये कितना मजेदार होगा।
1: हाँ, और ऐसा दोस्त तो हर किसी को चाहिए, लेकिन ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं बच्चों? आप भी जरा सोचिए, ऐसे दोस्त तो आपके घर में, स्कूल में, लाइब्रेरी में, यहाँ तक कि आपके बस्ते में भी मिल जाते हैं।
0: बच्चों, क्या आप पहचान पाए कौन है ये दोस्त? ये खास दोस्त है। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये है किताबें। सच में बच्चों, किताबें सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती, ये तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है, क्योंकि ये बहुत ही खास होती है।
1: हाँ बिल्कुल, अगर आपको रोमांच पसंद है तो रोमांचक कहानियों की किताबें हैं, हंसना पसंद है तो मजेदार कॉमिक्स हैं, जानवर, अंतरिक्ष या विज्ञान में रुचि है तो ज्ञान बढ़ाने वाली किताबें भी हैं।
0: और हाँ, कविता और कहानियों की किताबें तो कल्पना की दुनिया में घुमा लाती हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, अकबर बीरबल की कहानी, तेनालीराम की मजेदार कहानियाँ, और बहुत सारे ढेर सारे कॉमिक्स। जानवरों की कहानियाँ भी हैं दीदी, खोज और विज्ञान की किताबें हैं, कितनी सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं बच्चों।
1: और सबसे अच्छी और मजेदार बात तो ये है बच्चों कि हर किताब हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, कभी अच्छाई, कभी समझदारी, कभी हिम्मत, और कभी नई सोच।
0: वे हमें नई दुनिया में ले जाती हैं, कभी जंगल की सैर, कभी अंतरिक्ष की यात्रा, तो कभी बहादुर लोगों की प्रेरणादायक कहानियाँ। आप सबको भी तो ये किताबें बहुत पसंद होंगी बच्चों, क्योंकि ये मजेदार भी होती हैं और इनसे सीख भी मिलती है।
1: और बच्चों, किताबें कभी शिकायत भी नहीं करती, कभी नाराज भी नहीं होती। जब मन करे उन्हें खोलो और कुछ नया सीख लो, और इसी कारण

0: कारण कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी मित्र होती हैं।
1: अगर आप रोज थोड़ा समय किताबों के लिए निकालें तो आपको कितनी नई बातें सीखने को मिलेंगी।
0: हाँ, क्योंकि जिनके दोस्त किताबें होती हैं उनकी हर बात सबसे निराली होती है बच्चों।
1: इसलिए बच्चों थोड़ा सा समय किताबों के साथ बिताइए और ये दोस्त आपको हंसाएंगे भी, नई बातें सिखाएंगे भी और आपके सपनों को और बड़ा बनाएंगी और आपको आत्मविश्वासी भी बनाएंगी। तो क्यों ना इसकी शुरुआत आज से ही की जाए। तो चलिए, जानकारी की बातें तो बहुत सारी हो गई लेकिन अब बच्चों का कुछ मनोरंजन भी करवाना चाहिए दीदी।
0: तो चलिए बच्चों सुनते हैं ये बाल गीत।
2: सुन मेरे नन्हे, सुन मेरे मुन्नी, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
3: क्या माँ?

0: जादूगर ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
2: फिर राजा कैसे कहता?
1: क्या माँ?

0: सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। गढ़वा मूड़ी सेमर राष्ट्रीय राजमार्ग पर महदैया पेट्रोल पंप के पास पिछली रात एक तेज रफ्तार बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इससे बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। गिरिडीह जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए SP डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आज जागरूकता रैली निकाली। SP ने बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट लगाए लोगों को गुलाब फूल देकर हेलमेट पहनने का आग्रह किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिमेश रंजन ने आज उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गुमला के पद पर योगदान किया। इधर खूंटी में नए उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन ने भी आज योगदान किया। गोड्डा में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कॉमनवेल्थ डे के 75वें संस्करण और कॉमनवेल्थ गेम्स थीम पर +2 उच्च विद्यालय से शहीद स्तंभ तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में हॉकी खिलाड़ी और खेल प्रेमी शामिल हुए। रांची के 36 केंद्रों पर आज UPSC की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा शाम 7:30 तक प्रभावी रहेगी। सभी केंद्रों में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के करमाटाड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड क्षेत्र में करीब 35 हाथियों का झुंड पिछली रात जाताखुटी पंचायत के दालूगोड़ा गाँव में घुस आया। हाथियों ने स्कूल को क्षतिग्रस्त किया और वहां रखे मध्याह्न भोजन का अनाज खा गए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: था एम के ते सीता अपंग बोलता कम से कम 2 घंटा लगा बो रोई चाहिए सीधे तो बो एम था ना जो 2 फीट रे बो कटिंग ते ना
1: या
0: इन सीधे ते जाना अलकना बो टेंडर था
1: टेंडर था कि
0: या उसके बाद फिर 2 घंटा बाद रोए ना अनरिया मॉइस्चर जो नमी में ना इन चिप चिपुट के तो बोले लिखा
1: या
0: अगर काटे बोत ना इन रो तीर तम मतलब नमी में ना तो इन बणिया रेडी इन लगा लगे
1: इन जटर रोए तो बो
0: जटर दुखा के उंबुल लिखन अरे रोए तो बो
1: उंबुल रे
0: ये उंबुल लिखना मतलब जटरम रो दई अगर पूरे का जटे तो इन
1: अच्छा अच्छा
0: पूरे जटे तो इन रोर गाप तो बोत या नम
1: इन रोर ना और जान लपद बनो कछि
0: ये रोर गाप और तो फिर नमी इन री अच्छा बाका ना तो फिर ओ में से ना दाते हिरची हुरे तो बो
1: अच्छा इना तो छिना छके तो बो
0: उसके बाद फिर इन सेड जम बैत ना रेक रेक जम बैत ना एन रेक रे अब लेयर बाय लेयर जंग बु एम के तब एन रे चास दई अब
1: एन द जंग द छिलके मत बो
0: जैसे फर्स्ट लेयर
1: या
0: 4 टूम एम के डा
1: या
0: उसके बाद फिर एन रे ऑपोजिट साइड रे मतलब इटा कुटी ते
1: या
0: जंग एम के डे ते एन चितन रे ओंडो के लोट एम मी गांडी ते या
1: अच्छा
0: उसके बाद फिर एन चितन रे ओंडो जंग एम मी एन चितन रे ओंडो गांडी ते इटा कुटी ते मी यानी इनका कम से कम 4-5 लेयर बु एम मी
1: या
0: उसके बाद इना रेडी ये नेते त्रिपल तो बुडा दलपता
1: इना तो ओतेरे एमरियो चलाओ
0: ओतेरे एमरियो चलाओ लेकिन ओतेरे चिने छि निदिर को मन को एसु को
1: कमिया
0: जोमेतिया को मन दो फिर एन बणी प्रोडक्शन का ओल लतबो
1: एन
0: दो लॉस होती है बनम
1: अच्छा
0: एन दो ओतेरे एम केते कम से कम ओते ते 2 पीट चितन रे एम तार तो जान को का नुकसान है
1: एन मचल का बई तो बो
0: मचल का बई तो बो ये
1: मत को ते छिले
0: ये मत के अब तो निपा दो मत को सुला ले नमो ते मत को ते गे बहुत बणी
1: अच्छा एन दो कारो वा इनका तार दो
0: उसके बाद फिर तिरपेल ते नबो दलपता
1: हां
0: तिरपेल ते बो दरपता कम से कम 10 दिन लिखा बो दलबी
1: अच्छा
0: इनका दो 10 दिन दो प्रोडक्शन ओला एन दो 6 दिन रे तिरपेल बो फास्ट बो उठा आयाना
1: अच्छा
0: 6 दिन रे बो उठा के ते लेलिया बो माइसेलियम चिमिन हरा के ना मनती एन रो जो अच्छा। जाली लिखना भाइयो इन चिमिन पूरे भाइये के ना मनती है बोले लिया
1: अच्छा
0: उसके बाद 6 दिन 2 घंटा बो सीता पंग बो इन ये त्रिपल बो हटाया उसके बाद फिर 2 घंटा आयु पंग बो हटाया
1: अच्छा दलब उरे तो बोना
0: ये ना दलब उरे तो बो मी सिंगी बो उठा तार दो इना रो तिया ना
1: रो रे ना
0: ये रो रेगा बो इन 2 घंटा होयो ना मेले के सीता पंग दो आयु पंग 2 घंटा बो उठाया
1: इंदो फरवरी मन के दा मगे चंडो इमितिंग निना चास किए ते चिमिन चंडो जो का चलावा
0: आ निना फरवरी ते पूरे नवंबर जोंग चलावा
1: नवंबर जो का
0: नवंबर जोंग अब बुसु वो चास दई
1: अच्छा अच्छा
0: ये
1: कनन ये ओकना पेडी स्टॉबन मन ते मन के दा इना चिमिन महीने जो का चलावा
0: आ इना अब फरवरी ते नवंबर जोंग पूरे पूरे चलाओ
1: चलाओ के
0: ये पूरे पूरे साल भर चलाओ फरवरी ते नवंबर 10 महीने पूरे चलाओ
1: अच्छा इना ते नवंबर आते इटा ते
0: फिर नवंबर आते एन अक्टूबर है ते
1: yeah.
0: अक्टूबर है ते फिर ओंडो अन ये ओस्टर मशरूम भी चास दई है
1: अच्छा
0: ओस्टर मशरूम मार्च जंग भी चास दई है अगर इना टेंपरेचर बने भी मेंटेन दई दो अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून भी चास दई है ना
1: अन दो इना चिली के चके ते बो इना तो चिली के को चास है
0: ओस्टर मशरूम लगे दो इना जुका जुका जैसे ना अब चानी भी गड़ी है
1: yeah.
0: चानी भी गड़ी है एन साइज रे ओस्टर मशरूम लगे लोट भी गड़ी है चानी
1: उरी को जमे लगे
0: उरी को जमे लगे चानी जुका भी गड़ी है
1: yeah, yeah.
0: उसके बाद फिर इनाओ इनका के वो प्रोसेस ही है चूने एन ते ब्लीचिंग पाउडर दार एम के ते हाउ दे लिखना रे
1: yeah.
0: इना रात भर लगे भी डुबोता है
1: अच्छा
0: उसके बाद फिर 12 घंटा बाद वो ओल लिया सीतापंग भी ओल के ते तिरपेल लिखना रे वो फाइला होता है 2 घंटा लगे रो चमनते
1: अच्छा
0: ये पूरे तो कबूर हो
1: या
0: कम से कम चिपुड़ रबु दा काटे बोती है दुर्कर लेकिन तीरे दा हो जाती है दुर्कर
1: अच्छा अच्छा
0: ये इनका अच्छा। इनका अगर भाई ने अंदर समझौता मने रोए लगे रेडी हो गए ना
1: मतलब
0: उसके बाद फिर इना प्लास्टिक एक तो हो जुए 12x22x18 या एक तो प्लास्टिक हो जुए
1: अच्छा
0: लंबा चौड़ाई तो इन्हें 18 उसके बाद लंबाई तो इन्हें 22 इंच
1: अच्छा अच्छा
0: लेयर बाई लेयर बो लगा दिए जैसे ना पहला लेयर जो चानी बो एम रो है ना रेडी ना तब इना पहला लेयर जो कना वो मिये उसके बाद फिर जंग कुटी कुटी बो चारों कोनर बो एमिये उसके बाद फिर ओंडो एन चितन रोडो बुस उमिये ओंडो एन चितन रोडो जंग बो एमिये ओंडो एन चितन कम से कम 5-6 लेयर बो बाई के दबो तोल के सेट था
1: अच्छा
0: तोल के सेट कहते इना कम से कम 1 महीने का 28 22 दिन लिखा है ना एन रब हकता हैंगिंग मेथड तब हकता
1: अच्छा
0: उसके बाद फिर इन बो ले लिया बो ताबो रुआ एम तर के कम से कम

0: जिगेमार एंदो अयरपा अटकर इंगोल सड़ीबो अयमलीय
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱪᱮᱞᱮᱠᱮ ᱵᱚ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱠᱟᱨᱮ ᱱᱤᱛᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱵᱟᱜᱩᱲᱤ ᱛᱮᱭᱟ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱡᱮᱱᱟ ᱦᱚ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱱᱤᱫᱮᱥᱚᱠ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱪᱟᱭ ᱵᱟᱥᱟ ᱯᱤᱱ ᱤᱨᱤᱞ ᱯᱤᱭᱮ ᱯᱤᱭᱮ ᱵᱟᱨᱜᱩᱞ ᱢᱚᱭᱟᱱ ᱛᱮ ᱱᱤᱠᱚᱞ ᱥᱤᱠᱟᱢ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱞᱚᱡᱚ ᱤᱠᱟ ᱵᱚ ᱛᱚᱱᱰᱩᱨ ᱟᱞᱤᱝ ᱨᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱪᱟᱛᱟᱨ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱛᱩᱢᱩᱞ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱥᱨᱳᱛᱟᱣ ᱟᱵᱷᱤ ᱟᱯ ᱥᱩᱱ ᱨᱮ ᱛᱷᱮ ᱠᱟᱨᱮᱠᱨᱚᱢ ᱦᱚ ᱟᱠᱷᱲᱟ

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सन्मार्ग।

0: श्रोताओं, आज है 24 मई। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई सन 1819 को हुआ था। यह दिवस उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। हालांकि विश्व भर में राष्ट्रमंडल दिवस अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध साम्राज्यों में से एक महारानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। विक्टोरिया दिवस कनाडा में कम से कम 1845 से मनाया जा रहा है। यह एक विशिष्ट कनाडाई अवकाश है जो कनाडा की तत्कालीन संप्रभु महारानी विक्टोरिया के जन्म का जश्न मनाता है, जिनका जन्मदिन 24 मई को था। अब इसे कनाडा की वर्तमान संप्रभु के आधिकारिक जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: परिवार जो तो मरन बेटा क्रांति बेसरा आले नेहर में बोले नुकान परिस्थिति रे बोले सब वापस को रुड़ा धरा रे बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये
4: नाम मंगल राय को गाँव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखंड बात हो जाए
6: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनुता थामसा भरूपा ऐसा करना ऐसा दुकुरा में ना आया यापा में इरिया तपा में इरिया वाह बेटा निका
7: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितमाई कोड़ा मैंने में उड़ी उड़ी ने बागिया तोड़ के यूं दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमा दुर्गम गई तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
8: अलिंग मुनि सुरेन कहते आपी लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरेन का अले आया न तुम कहीं ना मिले आपी लेता ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम सन्मार्ग में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब हम आपसे बातें करेंगे मिशन वात्सल्य योजना पर। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकतानुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देख रेख करने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। श्रोताओं, यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थाई व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोर 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए ज़रूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चाईबासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है गर्मियों के मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियां। जानकारी दे रहे हैं शैलेंद्र और उनसे बातें कर रही हैं राधा।

0: बात कर रहे हैं कृषक श्री शैलेंद्र मुर्मू जी से। तो शैलेंद्र जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: गर्मी में उगाई जाने वाली सब्जियां, तो कौन कौन सी सब्जियां आप लगाते हैं?
1: गर्मी में एक्चुअल लौकी, भिंडी, टमाटर, करेली, ये सारे मुख्य सब्जी के रूप में आते हैं जी। और हमारे गर्मी में बहुत इम्पोर्टेंट सब्जी के रूप में देखा जाता है और शरीर में भी बहुत लाभदायक साबित होते हैं
0: जी। जैसे ये कोहणा भी लगाते हैं ना?
1: जी जी।
0: तो ये लतरदार सब्जियों में क्या क्या लगा रहे हैं?
1: करेली, लौकी,
0: झींगी
1: जी जी,
0: और कोहणा भी लगाते हैं। तो ये कब लगाते हैं और कब इसको काटना होता है?
1: एक्चुअल अभी फरवरी से शुरू करते हैं, लास्ट फरवरी से शुरू करते हैं, तो मार्च का लास्ट अप्रैल फर्स्ट में आप काट सकते हैं।
0: क्या लौकी?
1: जी, लौकी सबसे फर्स्ट, लौकी का समय जो है बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अपना मुनाफा देते हैं।
0: ये लौकी के बाद आप जैसे कि लतरदार सब्जियों में करेली हुआ, जो ये भी काफी अच्छा है और सेहत के लिए भी अच्छा है, और साथ में बहुत बड़ी मात्रा में आप लतरदार सब्जियों में इसे ले सकते हैं।
1: जी जी जी। एक्चुअल शरीर में आज जो भी हम लोग सब्जी खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद करेली हुआ, लौकी हुआ, ये हमें स्वस्थ में बहुत ही सुंदर लाभदायक सब्जी के रूप में देखा जाता है। और उनमें से अभी जो उगाए जाते हैं टमाटर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट देखा जाता है उसमें।
0: हाँ, अभी जो टमाटर आप लगाए हैं उसे आप गर्मी में कुछ दिनों बाद काटेंगे और ये काफी महंगे दामों में बिक्री होती होगी, है ना?
1: जी जी।
0: तो काफी आमदनी होती होगी
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: तो कोहणा किस तरह से लगाए हैं, कितना दूरी में कैसे लगाए हैं?
1: उसका क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीका है। हमारा देहात के अनुसार देखा जाए तो हर एक 3-4 कदम में एक एक बीज लगाते हैं, जिसका क्षेत्रफल 1 kg, 1.5 kg, 2 kg अपना क्षेत्रफल लेते हैं, उस हिसाब से अंतराल लगाते हैं।
0: अच्छा।
1: और अपना जमीन का आकार देखते हुए लगाते हैं जी।
0: तो ये आप मचान बनाए हुए हैं?
1: जी जी, बनाना पड़ता है।
0: बनाना पड़ता है। और जो फसल है उसको तो आप जमीन में नहीं रखते?
1: नहीं नहीं नहीं,
0: उसको मचान में ही
1: जी
0: रखते।
1: जी।
0: अच्छा, लौकी को भी से?
1: जी, लौकी को भी से।
0: अच्छा, और किस तरह से इसे, जब बहुत ज्यादा आप जैसे लौकी आप बोल रहे हैं खेत में लगाते हैं
1: जी,
0: तो हम तादाद तो बहुत ज्यादा
1: जी
0: होती होगी, तो फसल को आप क्या करते हैं?
1: एक्चुअल अभी गांव-गांव में साप्ताहिक बाजार हुआ करती है, उसमें भी ले जाते हैं। अदरवाइज सप्ताह में एक दिन जो मार्केट होता है, मुख्य बाजार के रूप में देखा जाता है, उसमें ढेर सारा सब्जी बिका जाता है, बेच देते हैं।
0: मतलब आपको बाजार मिल जाता है?
1: जी जी जी। अभी
0: कोई परेशानी नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं।
0: अच्छा, पानी के लिए क्या करते हैं आप?
1: पानी हमारे गांव-गांव में अभी देखा जा रहा है कि छोटा छोटा खेती करते हैं, तो नल का सुविधा भी है।
0: अच्छा।
1: और
0: नलकूपों?
1: जी जी, नलकूपों की सुविधा है, जिसमें से मोटर भी हर गांव में एक एक लगाया गया है, उनके माध्यम से भी इसका फायदा लेते हैं।
0: आपका ये जो कौन सा गांव, कौन सा प्रखंड में पड़ा?
1: कुचाई प्रखंड, पोंडाकाटा गांव पड़ता है जी।
0: तो इस पोंडाकाटा गांव में जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में कृषि कार्य होती ही है
1: जी जी,
0: है ना
1: जी।
0: तो ये जो सब्जियां आप लगाए हुए हैं
1: जी,
0: इसमें विशेष करके जो करेली
1: जी,
0: उसकी खेती आप बड़ी तादाद में कर रहे हैं
1: जी।
0: तो करेली को आप कैसे लगाए हैं, कब लगाए हैं?
1: करेली को एक्चुअल दिसंबर में लगाया गया है और अभी मार्च में हम लोग उसको तोड़ना शुरू करेंगे।
0: शुरू करेंगे
1: जी।
0: अच्छा, तो इसके लिए आप बीज क्या आपका बाजार से ही आपका?
1: जी, बाजार से उपलब्ध हो जाता है
0: जी, अपना नहीं रखते हैं?
1: नहीं नहीं नहीं।
0: अच्छा, और ये खाद के लिए क्या करते हैं?
1: खाद एक्चुअल हम लोग का जो गांव देहात में होता है, गोबर का सेवन ज्यादा करते हैं और उससे हमारे शरीर में ज्यादा फायदेमंद है। और रासायनिक खाद को उपयोग करने के बाद ज्यादातर देखा जा रहा है कि जितना विटामिन प्रोटीन मिलना चाहिए वो कम हो जाता है, इसलिए हम लोग अपना तरीका से जो बनाते हैं गोबर से, जी, जैविक खाद, उसी का उपयोग करते हैं।
0: कैसे कैसे बनाते हैं?
1: एक्चुअल गोबर जो होता है एक गड्ढा बनाते हैं
0: एक आकार का,
1: जी जी जी, जैसा 10x10 का, जी जी, उसमें गोबर डेली का रखते जाते हैं, एक महीना दो महीना के बाद उसको निकाल के सुखाते हैं।
0: सिर्फ गोबर डालते हैं?
1: गोबर और कुछ पत्तियां जो होता है, पेड़ के पत्ते हो जो हैं, वो सब भी वहाँ डाला जाता है,
0: खरपतवार सब,
1: जी जी जी जी, जी।
0: और उसको फिर निकालकर
1: सुखाया जाता है, गुंडी किया जाता है। इसके बाद जैसा जैसा मिट्टी को खोदते हैं उबलता है, उसमें मिला के उसको सुखाते हैं, इसके बाद बीज लगाते हैं,
0: वो आप पौधा में डालते हैं?
1: जी जी।
0: अच्छा, ये काफी अच्छा है, आपको रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता होगा?
1: कम करना पड़ता है, एकदम नहीं के बराबर बोला जाए,
0: जी। बहुत अच्छी बात है। और जब बहुत अच्छा, आप सिर्फ जो साप्ताहिक हाट है आपका गांव में, वही ले जाते हैं या बाहर भी फसलों को ले जाते हैं?
1: नहीं, इतना पैमाने पर तो नहीं कर पाते हैं, इसलिए
0: छोटे पैमाने जी, पे जी, आप सब्जियों को उगाते जी, हैं, विशेषतः आप अनाजों को ज्यादा उपजाते
1: हैं? जी जी, अपना फैमिली के लिए हो जाता है, फिर घरवाड़ी चलाने के लिए निकल लेते हैं कुछ,
0: जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अभी और मैं देख रही हूँ झींगा भी आप लगाए हुए, भिंडी भी है, तो ये सारी फसल जो आप जो लगाए हुए हैं, इसके लिए बीज किस तरह से लेते हैं?
1: मार्केट में जो पैकेट वाइज मिलता है उसी में से लेते हैं, और कुछ कुछ जो है अपने भी रखते हैं, पिछले साल जो हुआ उसमें से रखे हैं, उसको भी कर लेते हैं।
0: इसको भी इस इन सब्जियों के जो बीज होते हैं उन्हें भी उपचारित करना होता है?
1: जी जी जी,
0: उपचारित करना जी, कैसे उपचारित कर लेते हैं
1: जी,
0: इसको कैसे इसको उपचारित करते हैं?
1: जैसे करेली होता है, उसको कुछ भाग जो होता है नेक्स्ट ईयर के लिए ही उसको रखा जाता है।
0: अच्छा,
1: जी
0: अच्छा।
1: जी,
0: ज्यादातर आप ये इस्तेमाल में नहीं लाते
1: नहीं
0: हैं, बाजार से ही लेते हैं। कुछ खास बातें जैसे आप सब्जियों को लगा रहे हैं शैलेंद्र जी, वैसे तो अनाज बारह महीना उगाते हैं क्या आप? कुछ अनाज को
1: ऐसा तो नहीं कर पाते हैं, खेती करते हैं, इसके बाद ये सब्जी का जो है इसको हम लोग निरंतर रखते हैं जितना समय कर पाते हैं।
0: ये जो लत्तरदार आप सब्जियां लगाए हुए हैं और फसल को आप जमीन पे नहीं रहने दे रहे हैं, मचान बनाए हैं और मचान में ही चढ़ा हुआ है, तो जमीन में रहने से तो फिर चूहों की जो प्रकोप है
1: जी, इसके बाद जमीन और पानी का अंश लगने के बाद गल सकता है ना फल।
0: अच्छा, सड़ा
1: गला हो जाएगा,
0: इसलिए आप जी, सबको जी, मचान में ही
1: जी, उठाते जी,
0: हैं
1: जी।
0: अच्छा, फिर भी मचान में तो चूहों का प्रकोप रहता ही है?
1: तो रहता है, लेकिन उतना ज्यादा असर नहीं रहता है, इसके बाद हवा और धूप का मात्रा उस पर पड़ने से वो फल बड़ा होता है जल्दी।
0: अच्छा,
1: एक फायदा है।
0: फायदा है। और आप मतलब आप बहुत ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं, लेकिन परिवार के लिए आप सब्जियों को उगाते हैं, साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा जब हो जाता है बाजार में आप ले जाते हैं, मतलब बाजार में सप्ताह में ले जाना होता ही है। अच्छा, तो आप कहाँ तक पढ़े हैं?
1: ग्रेजुएट हैं।
0: ओहो, आप एक शिक्षित कृषक हैं और कृषि कार्य के साथ साथ कुछ और करते हैं?
1: जी, ऐसे तो मार्केटिंग करते हैं हम लोग।
0: अच्छा, आप कृषि के साथ साथ साइड।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था गर्मियों में उगाई जाने वाली सब्जियां। जानकारी दे रहे थे शैलेंद्र मुर्मू।

और इसी भेंट वार्ता के साथ ही अब समय हो चला है आप सबों से विदा लेने का, तो कार्यक्रम से रेखा को दीजिए विदा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सन्मार्ग, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की यात्री
2: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हो गया इंतजाम।
8: किसका?
7: गुड्डी की फीस का।
8: दिखा 20,000 का लोन तुरंत।
7: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
8: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
9: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
11: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
10: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
11: तो फिर सही नंबर
10: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
11: आपने तो बचा लिया दीदी।
10: काम से नहीं।
9: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
12: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
13: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कल से 11 जून तक राज्य में विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर करेंगे विभागवार समीक्षा। विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने धर्म और संस्कृति मुद्दे पर कांग्रेस को दिया जवाब, कहा सरना, सनातन और हिंदू एक ही संस्कृति और परंपरा का हिस्सा। CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में जारी की नोटिस, कहा विद्यार्थियों की अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी। राज्य भर में जारी भीषण गर्मी के प्रकोप से आम जनजीवन प्रभावित, गढ़वा, पलामू और चतरा में लू का अलर्ट। और रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे दिन कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर कल से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास कार्यों को गति देने के लिए कल से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। अलग अलग दिनों में होने वाली बैठकों के लिए

0: में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वास्तव में सरना समाज की हितैषी है तो आप याद करिए, भारत की पार्लियामेंट ने 1996 में पेशा एक्ट लागू किया। अभी उन्होंने नियमावली बनाया, उस नियमावली में कानून में क्या है मूल, जब उस कानून को देखेंगे, धार्मिक जो प्रथा है परंपरा को मानने वाले उसको ही उन्होंने हटा दिया है।
1: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिमेश रंजन ने आज उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गुमला के पद पर योगदान किया। उन्होंने जिले के संपूर्ण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इधर खूंटी में मोहम्मद जावेद हुसैन ने उपायुक्त के रूप में योगदान किया। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। उधर देवघर में सौरभ कुमार भुवानिया नए उपायुक्त होंगे। हजारीबाग के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय दो दिवसीय प्रशिक्षण अभियान का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद समेत पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण की शुरुआत की। मौके पर भाजपा के प्रदेश मंत्री अमरदीप यादव ने कहा कि जनसंघ से शुरू हुई यह यात्रा त्याग और संघर्षों की गाथा है।
2: भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर के चलती है और अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करती है कि हम कैसे अपने देश के लिए काम करें और कैसे सब हम लोग को जो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सिद्धांत है उसमें कैसे चल के हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, उसी के लिए आज 12 विषयों पर हम लोग का चर्चा होना है।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्वांटम AI नाम की एक निवेश योजना को बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें नागरिकों को 22,000 रुपये के शुरुआती निवेश के बदले प्रति महीने 3,00,000 रुपये की आमदनी का वादा किया गया है। सरकार ने कहा है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा है और वायरल वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तैयार किया गया है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने या एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने आज जिले के नारायणपुर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपराध पंजियों का संधारण, क्षेत्र के फरार चल रहे अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, मामलों का त्वरित निष्पादन सहित विभिन्न समस्याओं का अवलोकन कर आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिए।
3: निरीक्षण पुलिस अधीक्षक के द्वारा वर्ष में एक बार किए जाने का प्रोग्राम, मुख्य रूप से इसमें थाने के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको देखा जाता है। इसके अलावा जो वर्तमान समस्या है या अपराध कर्मी है उनके बारे में थाना के स्तर से क्या कार्रवाई हो रही है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो नहीं हो रही, उस संबंध में एक निरीक्षण होता है।
1: दुमका जिले में पर्यावरण संकट और लगातार घटते वन क्षेत्र को देखते हुए काठी कुंड प्रखंड की बीछी पहाड़ी पंचायत में वन विभाग की ओर से

0: जंगल बचाओ अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान निझौर गांव की किशोरियों ने पेड़ों पर राखी बांधते हुए संकल्प लिया कि वे जंगल और पेड़ों की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेंगी। कार्यक्रम का नेतृत्व लोक कल्याण सेवा केंद्र ने किया। बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा बाबा नगरी देवघर पहुंचे। बाबा मंदिर में उन्होंने पूजा की और राज्यवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। धनबाद के झरिया में 12 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने डिगवाडी बिजली स्टेशन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर झरिया विधायक रागिनी सिंह भी मौके पर पहुंची और विभागीय अधिकारियों को जल्द बिजली बहाल करने का निर्देश दिया। राज्य में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 49.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने 25 और 26 मई को गढ़वा, पलामू और चतरा जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है तथा लोगों से सतर्क रहने और धूप से बचने की अपील की है। रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित हो रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आज तीसरा दिन था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेली जा रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में आज खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विभिन्न ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में कई नए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जबकि अनुभवी एथलीटों ने भी दमदार प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में हरियाणा की रवीना ने स्वर्ण पदक जीतते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क भी हासिल किया। महिला 100 मीटर हर्डल्स और पुरुष 110 मीटर हर्डल्स स्पर्धा में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसमें कई धावकों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पुरुष 110 मीटर हर्डल्स में तेजस अशोक शिरसे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं महिला और पुरुष 800 मीटर दौड़ की हीट्स में भी खिलाड़ियों ने प्रभावशाली प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में भाग ले रहे कई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखकर अपना सर्वश्रेष्ठ देने में जुटे हैं। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन को राज्य के लिए गौरव की बात बताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कल से 11 जून तक राज्य में विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर करेंगे विभागवार समीक्षा। विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने धर्म और संस्कृति मुद्दे पर कांग्रेस को दिया जवाब, कहा सरना सनातन और हिंदू एक ही संस्कृति और परंपरा का हिस्सा। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में जारी की नोटिस, कहा विद्यार्थियों की अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी। राज्य भर में जारी भीषण गर्मी के प्रकोप से आम जनजीवन प्रभावित, गढ़वा, पलामू और चतरा में लू का अलर्ट। और रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे दिन कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: देखा
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
7: आरबीआई कहता है
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
9: फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी
10: एक ट्रेड में सिक्सर
11: ए अक्का
9: प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर
10: मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
12: तो थे जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर चतरा जिले को रेल सेवा से जोड़ने के लिए रेलवे मंत्रालय ने विशेष अधिसूचना जारी की है। बिहार के गया जी के परैया स्टेशन से चतरा तक 75 किलोमीटर की नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि
2: विशेष अधिसूचना के तहत चतरा गया रेल लाइन को स्पेशल उसको स्टेटस दिया गया है। स्पेशल स्टेटस के अनुसार 531 करोड़ अलॉटेड हुआ है, उसमें से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो जाए। जितने भी अड़चने हो, फॉरेस्ट का एनओसी का हो या जमीन का फॉरेस्ट को पैसा देना हो, जितनी भी चीजें हो उन सब तुरंत प्रक्रिया जितनी भी अड़चन का हो दूर हो जाए और समस्या की ओर जो समाधान करते हो आगे के कार्य की प्रगति करे, इसलिए स्पेशल स्टेटस इसको दिया गया है।
1: चतरा के उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKKY के अंतर्गत DMFT निधि से योजनाओं का चयन करने के लिए जिले के 154 पंचायतों में 21 से 23 मई तक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आधारभूत संरचना के चयन को प्राथमिकता दी गई। इधर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना चतरा जिले के किसानों को खेती और सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित हो रही है। चतरा के सिमरिया अनुमंडल के किसान महेंद्र कुमार और गिद्धौर प्रखंड के प्रगतिशील किसान मुकेश दांगी ने PM कुसुम योजना के लाभ के बारे में बताते हुए कहा कि
3: PM कुसुम योजना से हमें बहुत लाभ मिला है और हम किसानों को प्रेरित करना चाहूँगा कि PM कुसुम योजना का लाभ लें। और मेरा जो भी कांटेक्ट में है उन लोग को तो हम फॉर्म भरवा रहे हैं और दिला भी रहे हैं और हम अपना भी लगा रहे हैं और इधर पॉली हाउस भी मेरा है।
4: मेरा नाम मुकेश कुमार दांगी हुआ। मुझे PM कुसुम के द्वारा सोलर पंप मिला, जिससे मैं 5 एकड़ आम बागवानी लगाए हैं, इसका आम का पटवन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार द्वारा जो मिला है इससे बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है।
1: PM कुसुम योजना का लाभ लेने में चतरा जिले के किसान सबसे आगे रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि चतरा जिले ने केवल लक्ष्य ही हासिल नहीं किया है, बल्कि हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को योजना के जरिए बढ़ावा भी दिया जा रहा है।
5: हमारे चतरा जिला के किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के इच्छुक हैं और कृषि विभाग से समय समय पर इन्हें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की जानकारी BTM और कृषक पाठशाला के माध्यम से दी जाती है। और PM कुसुम योजना अंतर्गत हमारे चतरा के किसानों ने बढ़ चढ़ कर रुचि दिखाई है, जिससे ये प्रतीत होता है कि हमारे चतरा जिला के किसान पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत हैं एवं हरित सौर ऊर्जा अपनाने के इच्छुक हैं।
1: राज्य के अधिकांश जिलों की तरह चतरा में भी भीषण गर्मी और लू के कारण जनजीवन प्रभावित है। पिछले 2 दिनों में जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
0: अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं ये पहला खत जो हमें भेजा है अमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू, सरायकिला पारापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन, सिद्धेश्वर पाड़ापुर, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धि बो, सोना बाबू और एफएम शिवा मुंडरी, ग्राम उघड़िया से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डोली महतो, तरुण महतो एवं परिवार के सभी लोग, चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमोहिनी महतो, मनोरमा और दीनबंधु महतो, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिस्का और तन्मय गजभिये। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत, आवाज़ महेंद्र कपूर, मनहर उदास और लता मंगेशकर की, बोल इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

और अब कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत सुनवाते हैं आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में, फिल्म बहू बेगम से। पसंद आप सबों की है तूरी टोला चाई वासा से। मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो, हरी, खुशी, रिया और अर्पिता कुमारी। माहौलिया सोनुआ से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रवि वारी, वंदनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, आयुष, अन्नू, तन्नु, भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनुआ से गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, गीतेश महतो। बड़ा निमड़ी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार। पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेध कुमार दामोदर, गोपाल पाटिल। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा। न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद, रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अनीस और मुन्ना। आप सबों की पसंद पर सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म बहू बेगम का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म चलते चलते का ये गीत, आवाज़ अभिजीत और अलका याग्निक की, बोल जावेद अख्तर के, पसंद आप सबों की थी। गांव कीता सराय केला से राधा कृष्णा गोप, सुनीता देवी, उमा कुमारी, गीता देवी, रीता देवी, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, शुभम गोप, सुमित गोप, विकी गोप, सरस्वती देवी, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप, आराध्या कुमारी। पोंडा काटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हरसमनी महली, पार्वती, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदनी, गोपाल महली, साजीव सोरेन, करीना महली और एनएस महली। गांधी चौक रोपड़ बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष। एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। ग्राम खेड़िया घर प्रखंड मंझारी से बसंत बेंकुरा, सुलोचना बेंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी, जयमनी और जयंती। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: बड़ा परिवार देखो वन में मरन बेटा क्रांति बेसरा आले मगे नेहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोर आए को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्तो तो कहाँ तो घर आई ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
8: मुतुम बुरा मिसिंग काम सोए अनिता थामसा भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा मिना आज्ञा जापा मैं रिया तपा मैं रिया वाह बेटा मिका।

0: பட்டணத்து முடி கூட அயகுண்ட கொத்தமணி கூட ஒரு பட்டணத்தும் கித்தமாய் கூட மினிமம் உரி உடனே பகையாத்தோட்கையும் சிஆர்பி கொள்ளோ போலீஸ் கொள்ளோ இன்னும் லடை இச்சலாவோத்தன முருகன் கொய்யாண்டோ ஜெய தேர கக்கோ இனிப்பு கொக்கோ கக்கோ நெருமையா
1: அலிங் முனிசுரன் பேத்த அப்பிலத்தன அலிங் ஜா உராரே மினை ரோஜி தவுராரே மினை ரோ புகின் முராத்தே செசன் கா உவாகே பிட்டா உரன் கா அலி அயா நுதும் தெய்னம் அப்பிலத்தன
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

इन संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम आपकी पसंद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत, मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म है चालबाज, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पसंद आप सबों की है। बड़ा बाम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, श्यामदेव नायक, पूजा, सीमा, सुदर्शन प्रमाणिक, ममता, नमिता, सुशीला, ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश, अन्नू, बनमाले, सिद्ध कुमारी और पूजा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। खरसावां पतिसाई से सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक। सोनुआ गांव पोड़ाहाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक, सुखराम नायक और मखरू आचार्य। तिवर्ता डबरी पारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जागेंद्र कुमार मरकाम। डबरी पारा तिवर्ता से गजेंद्र प्रताप मरकाम, सुरेंद्र कुमार मरकाम, मोहन सिंह मरकाम, मनमोहन सिंह मरकाम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म बलमा का ये गीत, आवाज़ आशा भोसले कुमार सानू की, बोल समीर की और संगीत नदीम श्रवण का। पसंद आप सबों की थी। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, बाबा कोटी उफरा पाटन से प्रेमू साहू, यमुना साहू, कुचाई तोड़ांगड़ी से विजय महतो, मुकेश महतो, दिलीप महतो, सुमन महतो, सूरजमणि महतो, रविंद्र महतो। और इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सुनवाते हैं। ये पहला फरमाइशी गीत किशोर कुमार के स्वर में, फिल्म है अंधा कानून। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के फरमाइश करता हैं चंदा रेडियो श्रोता संघ, चंदा चौक, अंधरा ठाड़ी, जिला मधुबनी, बिहार से। शोभिकांत झा सज्जन, हेमलता सज्जन, मनोज सज्जन, लक्की सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन, मास्टर एस के सज्जन, सरोज चौक, अमरावती, महाराष्ट्र से। कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हिरदिया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, राउफ भाई, साहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, ग्राम जामठी, अमरावती, महाराष्ट्र से। मुकेश कांसलेकर, दिनकर, विमल, विशाखा कांसलेकर, लालपुर मारो से कीर्ति कुमार ध्रुव, सतीश, विनय ध्रुव, निम्मी, पम्मी ध्रुव, रितेंद्र कुमार ध्रुव, नाज मंजिल, महसूल, सीतामढ़ी, बिहार से। अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इसरत अकरम, बहू रुबीना वशीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू सैक, चीना सैक। कोकिलवारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल सैक, नुजहत जहां नाज, कांति निकेतन राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सबों की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं फिल्म अंधा कानून का ये गीत, आवाज़ किशोर कुमार की।

और अब सुनवा रहे हैं फिल्म बस इतना सा ख्वाब है का ये फरमाइशी गीत, आवाज़ अलका याग्निक और शान की। फरमाइश आप सबों की है। आमजोरा पोखरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहने संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप और परिवार के सभी लोग। चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी और संतोष आनंद। खरसावां गांव दलाई केला से लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, गीता सोए, सिनीमाए सोए, सरिता सोए, तनुजा सोए, सारिका और हारिका सोए। खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बीबी आरजू जाजोरिया।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म आंदोलन का ये गीत, आवाज़ कुमार सानू और अलका याग्निक की, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनना चाहा था छोटा निमडी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन, कोमल, ऋतिक, अमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू, गांव कूड़ा से पोर्ने बोईपाई, रेशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा बोईपाई, मोनिका बोईपाई, सुनीता बोईपाई, मीनाक्षी बोईपाई, देवी चरण भंज और तारकेश्वर बहांदा, बरकाकाना से अफजाल ताज, साहिन सुल्ताना, मुंबई से महेंद्र मोदी, राजा बाबू, बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस अंतराल के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम रजनीगंधा में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं फिल्म अंजाम का ये गीत। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण। फरमाइश आप सबों की है। ग्राम जोजो कुर्मा से मनोज गागराई, बासंती गागराई, सोनाली गागराई, आयशा गागराई, रचना गागराई, जितेंद्र गागराई। कुचाई ईचा हाथू से गोलाराम लोवादा, लुदरी लोवादा, सुरती लोवादा, सोमनाथ लोवादा, पूर्णिमा लोवादा, लालमुनि लोवादा, विंजना लोवादा। वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, मधु लकड़ा, नताशा और बेबी देवी। बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार, पवन, मीना पवन। महलीसाई से बिरबल महली, सरस्वती महली, प्रेमचंद महली, फूनमणी महली, शकुंतला महली, सुमानती महली, यशोदा महली, शांति महली। गोल्डन रेडियो लिसनर्स क्लब राज पैलेस, महुनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, रितेश सोनी, दूधनाथ भारती, पारुल पल्लवी, शैलेजा सोनी। रविदास मंदिर हकीकतपुरा से मुन्ना स्वर्णकार, सोनू स्वर्णकार, आर्यन स्वर्णकार, लिटिल पीयू स्वर्णकार और पूरा स्वर्णकार परिवार। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लभी श्रीवास्तव। आप सबों की फरमाइश पर सुनवाते हैं फिल्म अंजाम का ये गीत, आवाज़ अलका याग्निक और उदित नारायण की।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वरों में फिल्म अंश से, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का। इस गीत के फरमाइश करता है।

ग्राम जोजो कुर्मा से सुकरा महतो, पीताम्बर महतो, मुरारी महतो, राजेश महतो, कविराज महतो, सुपाईसाई से कर्ण प्रधान, ज्योति प्रधान, जगवंधु प्रधान, दुश्मन प्रधान, मिथुन प्रधान, बड़ा कुर्मा से सुदर्शन महली और चिगड़ू महतो, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, इंदिरा बिहार, रायगढ़ से अकरम नूरजहाँ, डब्लू नूरजहाँ, सईद नूरजहाँ, वसीम नूरजहाँ, वलीउल्लाह नूरजहाँ, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, दुर्गाई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता, सी आर कुलकर्णी, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, कुचाई बिदरी से के पी सोए, सरिता सोए, दुर्गामती सोए, राजकुमारी रेशमी, विशाल मुन्ना और सनी सोए, ग्राम सुड़ाबेरा से बासी सरदार, बीरू सरदार, रमेश, कमल सिंह और अंशु और पूरा सरदार परिवार, खरसावां बड़ा बाम्बू उघड़िया से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डोली महतो, तरुण महतो और समस्त परिवार।

श्रोताओं, और अब सुनते हैं फिल्म जागृति का ये देशभक्ति गीत, आवाज़ आशा भोसले और साथियों की, संगीतकार हेमंत कुमार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म जागृति का ये देशभक्ति गीत आवाज़ आशा भोसले और साथियों की। इस गीत को सुनना चाहा था बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी समीमा सनम जिम्मी बिट्टू किरण रोशनी परी मुस्कान नबीहा रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू लेवेई से गुलाबदास मानिकपुरी दंतरेंगी से भागवत वर्मा अलिका डबोवाली से बसंत सिंह चांद राजकुमार सुनीता कुलदीप गांधी रावण करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा सोमनाथ कालिया गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर वीरक जयतेग वीरक मीका वीरक आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी श्रीमती सरोज ध्रुवंशी मास्टर सानू ध्रुवंशी एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता बोध निखिल कांगड़ा अंकित कांगड़ा साहिल कांगड़ा। इन्हीं फरमाइशी गीतों के साथ ही श्रोताओं, अब समय हो चला है आप सबों से विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दें, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, कि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोक।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।
0: सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।

बिना स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4

0: आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कैट 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्य

में विद्यार्थियों और लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों आईआईटी के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच सीतारामन से मुलाकात की और सीबीएसई परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा बैंक बड़ौदा बैंक कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान में एक ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में

डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शेराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1 lakh votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government enters for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security, Addressing a press conference following delegation level talks, Dr. Jayashankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I energy trade in recent months, diversified supplies are at the heart of.
3: On the Iran conflict, Mr. Jayashankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy as well as safe and unimpeded maritime commerce was also reiterated. He also pointed out that India is one of the very few countries in the world which has strong relations with the US, Israel, Iran, as well as other Gulf nations. Dr. Jayashankar also highlighted the importance of people-to-people ties and said legal mobility should not be adversely affected.
4: People-to-people ties are at the heart of our relationship. I apprised Secretary Rubio of challenges that legitimate travelers face in with illegal and irregular mobility. Our expectation is that legal mobility would not be adversely impacted as a consequence.
3: U.S. Secretary of State Marco Rubio strongly underscored the strategic dimensions of the partnership, describing India as one of the United States' most important partners in the world. National Security Advisor Ajit Doval today met U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio in New Delhi. In a social media post, Ministry of External Affairs said the discussion focused on defense, security and strategic technology cooperation, including the Trust Initiative. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has registered a landslide victory in the repoll for the Falta Assembly constituency. Mr. Panda won by over 1,09,000 votes in a seat widely regarded as a stronghold of the Trinamool Congress, whose nominee slipped to fourth place and forfeited his deposit. The Election Commission had ordered a repoll in Falta following allegations of large-scale malpractice during the polling for the West Bengal Assembly elections. The repolling was held on the 21st of this month. We have more from our correspondent.
5: Breaking the so-called Diamond Harbour model of the Trinamool Congress, BJP party candidate Debangshu Panda won the seat by a margin of 1,09,021 votes, defeating his closest rival CPIM Somunath Kurmi, who has got 40,645 votes. Debangshu Panda has got 1,49,666 votes. In an astonishing turn of event, Trinamool Congress's candidate Jahan Janata Party has increased to 208 out of 294 assembly seats in the Vidhan Sabha. Kollan Laha reporting from Kolkata.
3: The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation and repatriation in line with Ministry of issued by the Home and Hill Affairs Department. Districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. The directive instructs authorities to act as per the MHF, Asian nationals and Rohingyas found residing illegally in India. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology, Madras and IIT Kanpur to assist the Central Board of Secondary Education, CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. The decision has been taken in view of the developments and concerns raised by students and parents regarding the CBSE post-result services. He spoke with Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman to address technical and payment-related issues being faced by students during the CBSE post-result and re-evaluation process. The Education Ministry said that during Canara Bank and Indian Bank its payment gateway infrastructure and necessary integration with the post-examination services portal. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at

खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती माहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमदोर। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई

ये आकाशवाणी का चाई भाषा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब पेश है गजलों का कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल में सुनवाते हैं ये पहली गजल अनुराधा पौडवाल और चंदन दास के स्वरों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चंदन दास के स्वर में ये गज़ल। आकाशवाणी के चाय बासा केंद्र से आप सुन रहे हैं गज़लों का कार्यक्रम महफिल, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं का कार्यक्रम महफिल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम महफिल। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग।

कार्यक्रम सुरों के रंग में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में सुनवाते हैं ये पहला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, फिल्म बहू बेगम

0: और अब सुनवाते हैं हेमंत कुमार के स्वर में फिल्म 20 साल बाद का ये गाना।
1: करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

और संगीतकार सलील चौधरी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वरों में फिल्म अपनापन का ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे नूरजहाँ के स्वर में फिल्म अनमोल घड़ी का ये गीत। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म आरजू का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आरजू का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 800,000 से अधिक आवेदकों में से लगभग 549,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
3: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country